0: क्या वो मोइत्रा भी इधर आ सकती हैं? आजकल बहुत वो ममता बनर्जी की बात कर रही हैं, उनको लेकर डिफेंड कर
1: ये
0: रही हैं।
1: महुआ बनर्जी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के विरुद्ध बात करता है, अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध बात करता है। कभी कौन का बोलता है, कभी नहीं बोलता है, इसका कोई बात नहीं। कभी मन में क्या आएगा हम बोल नहीं सकते।
0: महुआ मोइत्रा आ सकती हैं, आप लोगों के साथ जुड़ सकती हैं?
1: राजनीति में कोई असंभव नहीं है, राजनीति में कोई असंभव नहीं है। जो आज हमारा सीएम है बंगाल का,
0: जी
1: वो तो पहले टीएमसी का था, अभी वो बीजेपी आया, आज सीएम बना। और सीएम बनने के बाद बीजेपी में जो काम किया है, अभी वो स्टेट में वो अच्छा काम किया है। तो ऐसा बोल नहीं सकते थे हम, कभी कौन पार्टी में रहेगा और कभी नहीं रहेगा। राजनीति में असंभव कोई नहीं।
2: Someone who's so enamored or is entrenched in love stories, what is your idea of love? What is a perfect love story for you, Imtiaz?
3: I have no idea. If I had any idea, I wouldn't be making stories in which this love stories would be popping up at all times. I feel that it's the lack of clarity that leads me into this kind of cinema.
2: Are you still looking for love?
3: Everyone is looking for love, but not in the most obvious ways.
2: Hmm. You're finding perhaps there is a variety that you can have.
3: Not variety, right? Not variety in the sense of many partners.
2: No.
3: Variety in the sense
2: in
3: of
2: different aspects.
3: In different aspects of. And also, I feel that a love story connects you with your own self. I feel ultimately the story is with the relationship with your own self. And you know, I have this thing to say that a person who has a love relationship, if he has another relationship, he perhaps behaves in the same way in that relationship also. A passionate lover is always a passionate lover in every relationship of theirs. Why is that so? It's perhaps something of their own desire that they want and they express whenever they feel that they have an opportunity or an object of love.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: क्या वो मोहित्रा भी इधर आ सकती हैं? आजकल बहुत वो ममता बनर्जी की बात कर रही हैं, उनको लेकर डिफेंड कर
1: ये
0: रही हैं।
1: महुआ बनर्जी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के विरुद्ध बात करता है, अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध बात करता है। कभी कौन का बोलता है, कभी नहीं बोलता है, इसका कोई बात नहीं। कभी मन में क्या आएगा हम बोल नहीं सकते।
0: महुआ मोहित्रा आ सकती हैं, आप लोगों के साथ जुड़ सकती हैं।
1: राजनीति में कोई असंभव नहीं है, राजनीति में कोई असंभव नहीं है। जो आज हमारा सीएम है बंगाल का,
0: जी
1: वो तो पहले टीएमसी के था, अभी वो बीजेपी आया, आज सीएम बना। और सीएम बनने के बाद बीजेपी में जो काम किया है, अभी वो स्टेट में वो अच्छा काम किया है। तो ऐसा बोल नहीं सकते थे हम, कभी कौन पार्टी में रहेगा और कभी नहीं रहेगा। राजनीति में असंभव कोई नहीं।
2: Someone who's so enamored or is entrenched in love stories, what is your idea of love? What is a perfect love story for you, Imtiaz?
3: I have no idea. If I had any idea, I wouldn't be making stories in which this love stories would be popping up at all times. I feel that it's the lack of clarity that leads me into this kind of cinema.
2: Are you still looking for love?
3: Everyone is looking for love, but not in the most obvious ways.
2: You're finding perhaps there is a variety that you can have.
3: Not variety, right? Not variety in the sense of many partners.
2: No.
3: Variety in the sense
2: in
3: of
2: different aspects.
3: In different aspects of. And also, I feel that a love story connects you with your own self. I feel ultimately the story is with the relationship with your own self. And you know, I have this thing to say that a person who has a love relationship, if he has another relationship, he perhaps behaves in the same way in that relationship also. A passionate lover is always a passionate lover in every relationship of theirs. Why is that so? It's perhaps something of their own desire that they want and they express whenever they feel that they have an opportunity or an object of love.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: गाइस आपको बड़ी मस्त चीज दिखाता हूँ। देखो ये क्या चीज है। अब इंडिया में जिस भिंडी की हम सब्जी बनाकर खाते हैं ना,
1: An Indian man in the US was stunned after discovering bhindi had undergone a luxury makeover।
0: और एक बार इसका प्राइस चेक करो कितने की है, $6.5 की, मतलब इंडिया के कुछ तो 600 रुपए के हिसाब से मिल रही है। और
1: ड्यूरिंग अ सुपरमार्केट विजिट ही स्पॉटेड एक्सपेंसिव क्रिस्पी ओक्रा स्नैक्स एंड जोक्ड दैट द हंबल वेजिटेबल हैड रिसीव्ड अ मैसिव सैलरी हाइक अब्रॉड। द रिलेटेबल रिएक्शन क्विकली रेजोनेटेड विद इंडियंस ऑनलाइन।
0: तो कहाँ एक तरफ $2.5 का इतना बड़ा पैकेट और कहाँ $6.5 का छोटा सा पैकेट। अब आई थिंक भिंडी जो है अमेरिका में इतनी उगती नहीं है, शायद इसीलिए इतना महंगा मिल रहा है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में कितने का पैकेट मिलना चाहिए ये वाला आपके हिसाब से, कमेंट्स में बताओ।
2: लुट जाऊंगा मिट जाऊंगा दिल तेरा जीते के दिखलाऊंगा।
1: फादर डॉटर डुओ इज मेल्टिंग हार्ट्स अक्रॉस सोशल मीडिया आफ्टर देयर रेंडिशन ऑफ अ बिलव्ड बॉलीवुड सॉन्ग क्रॉस 20 मिलियन व्यूज। शेयर्ड बाय सिंगर यश श्रीवास्तव द होलसम performance celebrates music, innocence and family bonding.
2: मिट जाऊंगा दिल तेरा जीते के दिखलाऊंगा, पीछा ना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा, दिल डूबा।
3: ओनर्स इन बैंगलोर रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी जो भी यहाँ पे बैंगलोर में आते हैं, हर कोई आईटी में काम नहीं करता और हर कोई लाखों पैसे नहीं कमा रहा है।
1: बेंगलुरु वुमन हैज रीइग्नाइटेड द सिटीज रेंट डिबेट आफ्टर क्लेमिंग लैंडलॉर्ड्स अज्यूम एवरी टेनेंट वर्क्स इन टेक एंड अर्न्स अ सिक्स फिगर सैलरी। Sharing her frustrating experience online, she highlighted the growing disconnect between rental expectations and reality, prompting thousands to share similar stories.
3: लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का रेंट बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके का डिपॉजिट बढ़ते जा रहा है, नहीं है आसान यहाँ पे सर्वाइव करना। मतलब बहुत से लोगों को यही दिक्कत आ रही है कि भाई यहाँ पर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होते जा रहा है, हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या। अब फिर यहाँ पर लोग बोलेंगे कि भाई दीदी आपको बुलाया किसने यहाँ पे, आप यहाँ से चले जाओ, काम के लिए आया है ना, हर कोई कमाने के लिए निकलता है घर से। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बिकॉज आप पे रेंट ज्यादा है मैं अपने घर जाके बैठ जाऊं।

0: A Bengaluru software engineer is melting hearts after documenting his parents' post-visit to the Microsoft campus where he works. For Tarun Khangare, the achievement wasn't landing the job years ago, but finally being able to walk his parents through the workplace that helped shape his career journey.
1: A realistic breakdown of how much I spend in a month as a 23-year-old accountant working and living in Dubai. Hi, I'm Surya and here goes the breakdown.
0: A 23-year-old Indian accountant living in Dubai has gone viral after revealing she spends just 1,100 AED, which is about 28,500 monthly.
1: I have to cook my food and buy groceries on a weekly basis. This is my biggest expense and I spend around 100 dirhams for my groceries per week, which totals up to 500 dirhams per month. I have personal Wi-Fi from Do so that I have to pay...
0: Surya Gayatri explained that company provided accommodation significantly cuts her expenses, giving viewers a detailed glimpse into budgeting and everyday life for young professionals working abroad.
1: Once a month, I take a taxi from my nearest metro station to my accommodation, which costs me around 35 dirhams. So travel comes around 100 to 110, depending upon the frequency of taking the taxi. And eating out on weekends costs me around 100 dirhams. Then comes my favorite part, spending a little money on myself. Shopping has no fixed budget, but I would still like to keep it under 100 dirhams to 150 dirhams. Otherwise, I might go bankrupt. And other miscellaneous expenses like water, noon minutes, etc. will cost me around 50 dirhams. So, summing up everything, I spend around 1,100 dirhams per month on an average. This is completely based on my lifestyle and it can be higher or lower depending upon the way I spend it. And that's my real monthly expenses living in Dubai. See you in the next one. Bye.
2: 38,000.
0: Can a higher salary truly improve life if expenses rise too? A German-Indian couple has sparked debate after comparing monthly incomes and everyday costs in India and Germany. This side-by-side breakdown explores the reality behind salaries, saving and living standards, prompting viewers to rethink what actually makes life better.
3: 50,000.
4: भाई अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में फलाने रिश्तेदार के फलाने बच्चे का 1 crore रुपए का पैकेज लगाया. अब इस पैकेज की सच्चाई क्या है? चलो आओ चेक करते हैं.
0: A professional living in New York has challenged the perception that a 1 crore salary guarantees luxury.
4: कुछ और है. क्योंकि भाई यहाँ लगता है फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, न्यूयॉर्क सिटी टैक्स, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर. मतलब आपके 1 crore के पैकेज का 35 से 40% सिर्फ टैक्स में चला गया.
0: ब्रेकिंग डाउन टैक्सेस एंड लिविंग एक्सपेंसेस, यश शर्मा एक्सप्लेन्ड हाउ मच of the income disappears before reaching the bank account, sparking conversations about expectations versus reality abroad.
4: 30 lakh rupees kamane wala banda New York ke 1 crore rupees ke package wale bande se zyada khush hai. Par haan, comment mein India ke asli deshbhakta ke bolenge ki bhai wahan ki hawa mujhe to hamesha weed ki smell aa rahi hai. Baki tum jaano. Jai Ram ji.
0: A Bengali folk song has unexpectedly found a global audience after tourists from different countries were seen singing and dancing outside Amsterdam's Van Gogh Museum. The viral clip celebrates the growing international appeal of regional Indian music.
5: I was wondering, have you seen my towel?
6: George, have you seen Kimmy's towel?
0: Formula One fans were left amused after Kim Kardashian accidentally stole attention from Monaco racer winner Antonelli. Before the podium ceremony, she was spotted using the winner's cooling towel to beat the heat, creating a light-hearted moment that quickly spread across social media.
7: एम्स्टर्डम में रुके हुए मुझे 3 हफ्ते हो गए और मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये शहर अपनी दुर्गति के अंतिम चरण में है. विकास का यहाँ कोई दूर दूर तक नामो निशान है ही नहीं. यहाँ के लोग घमंडी भी बहुत ज्यादा है. ये बच्चों को ऊपर वाले की नहीं अपनी ही देन मानते हैं और खुद बर्थ कंट्रोल जैसी चीजों पे ये लोग मानते हैं.
0: कॉमेडियन रवि गुप्ता हैज गॉन वायरल फॉर हिज सरकास्टिक टेक ऑन एम्स्टर्डम्स डिक्लाइन.
7: इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं और जो नदियां हैं उसको नदी ही मानते हैं. मैं पूरा नदी घूम लिया, ना कहीं नारियल ना कहीं चुनरी, कोई श्रद्धा भाव इनके अंदर है ही नहीं. नदी वही साफ की साफ, उसमें आप कभी भी नहा सकते हो। मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि एक पूरी तरह से अधार्मिक और नास्तिक देश है।
0: Pointing to clean rivers, reliable electricity, protected green spaces and accountability, he jokingly described the city as fallen, while subtly highlighting governance and infrastructure issues that many developing nations continue to face.
7: सरकार इतनी फटू ही क्राइम होने ही नहीं दे रही। क्राइम पे पूरी तरह से कंट्रोल है। क्यों कंट्रोल है? क्योंकि तुम्हारे पास पुलिस ही नहीं है। अगर इस शहर में 5 मिनट से ज्यादा लाइट कट जाती है तो सरकार की फट जाती है कि जनता प्रोटेस्ट पे न उतर आए। अरे तुम कैसी सरकार हो? जनता से डर जाते। शहर साइकिल से घूम रहा है, साइकिल से डर डर के चला रहे हैं कि किसी को छू ना जाए। अरे इनको पता नहीं थार नाम की गाड़ी आई है जिससे 8 साइकिल वालों का घमंड एक साथ तोड़ सकते हो। पूरा शहर मौगा टाइप जिंदगी जी रहा है। हाय, हेलो, थैंक यू, नमस्ते, यही सब चल रहा है। एक दूसरे से झुक के मिलना, बदतमीजी नहीं करना। ये तो हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं तो माहौल बना रहता है।
8: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.

0: if catastrophe had a picture, it would be this. As I have walked in over the last 1 kilometer, all I have seen, and I will show you, in time, there are fires which are still being put out, and this is the tail end of the aircraft, of what you can see on the crash landing of AI-171 London bound. I want to immediately try and get our viewers a sense in terms of what really happened. I have a nurse, because this was a hostel for medical students. I have a staff nurse who works at the
1: Ashram quarters.
0: She lives at the Ashram quarters, which is right next to this particular hostel. And ma'am, sabse pehle apna naam bataye.
1: मेरा नाम है आरती साधु. मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ. आई डिपार्टमेंट में हूँ. हाँ, तो हम सो रहे थे तो एक धड़ाका हुआ, तो हमने देखा तो बाहर निकले तो सब धुआं धुआं धुआं और आग फैली हुई थी चारों तरफ. सब आग, कुछ दिखता ही नहीं था, बस धुआं ही धुआं दिखता था.
0: I'm standing at the crash site, and this was the cockpit side, the front of the plane. And then if you go all the way back, you can see the tail end as well. And what you can actually see is a visual of absolute catastrophe. The tragedy and the scale of it can be counted. Viewers, if you look at the strewn clothes, medicine, slippers, I saw a watch. Of all the passengers who were on board, this was the business class section, and those who have been standing here tell us that this is where most, and probably Mr. Rupani, the first class section and the business class section bodies were pulled out. I have with me, sir, kya naam hai aapka?
2: Nitin Shah.
0: Nitin Shah. Aap RSS se hain?
2: Ji.
0: Yahan pe subah se hain?
2: हाँ, जब से
0: दोपहर, मतलब
2: यहाँ पे तो पूरा फायर था. नियर अबाउट 4 o'clock तक पूरा यहाँ पे आने जैसा जगह नहीं था. एक्चुअली जो हुआ ना, लास्ट में जो बिल्डिंग है ना, लास्ट वहाँ पे टेल, हाँ, वो थोड़ा हुआ था और उसकी वजह से पूरा यहाँ पे आके लैंड हो गया. बाकी लगभग कोई नहीं बचा है.
0: तो आपने मदद किया एक-एक जैसे?
2: जी हाँ, एक्चुअली जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पर तो ऐसा था कि पूरा जो भी बॉडी वगैरह था पूरा ब्लेंड था, तो काफी दिक्कत भी हुई. 4 से 5 बॉडी तो हमने भी हाथ से लगाकर भेजा था यहाँ पे से. और इनिशियली स्टाफ वगैरह गवर्नमेंट का जो भी

0: आया उसके पहले कई ऑटो रिक्शा वाले, कई प्राइवेट टैक्सी वगैरह वाले, उन्होंने भी सपोर्ट किया, वो भी यहाँ से बॉडी को लेके गए थे।
1: इट्स ओवर अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 600 मीटर्स, दिस बिल्डिंग राइट देयर कंप्लीटली चार्ज, देयर स्मोक स्टिल बेलोइंग फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोर्स। आई आस्क संजय टू एक्चुअली यू नो जीरो इन देयर, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फॉर अबाउट 300 मीटर्स। दिस इज लाइक आई सेड द मेस एरिया, ब्रिक मोर्टर remains of the aircraft, the debris, mattresses and broken dreams of young lives who wanted to make it big, all sitting eating lunch not knowing that a plane is going to ram into their building. That's the wheel of the aircraft, that's the tail end of the body. You can actually see a part of the Maharaja Air India's logo right there. Mattresses of students' rooms, their beds there, and bloodstains. And this was the mess. Sanjay will just show you, this was the mess. And this is all but destroyed. And this is where the young students were sitting there grabbing lunch. You know, this is heartbreaking. Clearly somebody was eating his meal right here. And I can, you know, I've counted the number of thalis, that more than 25. This is where they were sitting. Sanjay, just turn around. I'll ask Sanjay, and then you can get a view of how the aircraft actually slammed into this building. That is what I showed you right there. That's the tail end of that aircraft. This is the, you know, the tables, the benches. And you can see their meal uneaten right here. आपका पूरा टीम कितना एम्बुलेंस के साथ आया?
2: शायद पांच मिनट में तो ज्यादा से ज्यादा सब 105 आ गई थी यहाँ पे। मेघारी नगर आई थी, चमनपुरा और ये चामुंडा ब्रिज।
3: कॉल नहीं आया था, जस्ट लोग हम खाना खा रहे थे। हमारे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे हमारी ऑफिस है, 1200 बेड हॉस्पिटल, 1200 बेड यहाँ से 200 मीटर दूर है, 1200 बेड कैंप सिविल हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, मतलब खाना खाने बैठे थे, टिफिन हमारे सब खोल दिया था, जैसे हमने खोला सब ब्लास्ट हुआ, बहुत तरह धुआं और आग निकलने। तो वहाँ से हम खाना छोड़ के, नहीं कॉल नहीं आया था, कॉल नहीं आया था, सीधा हम सर्वाई के लिए चले गए।
2: मेरा पे कॉल आया था, मेरे चामुंडा ब्रिज को कॉल आया था, ज्यादा से ज्यादा मैं पहुंच गया था, 5-7 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया था।
1: कितने लोगों को रेस्क्यू किया?
4: मैंने मैडम 3-4 जिंदा बंदी को ले गया। और
1: जो लेके गए वो स्टूडेंट था, हॉस्टल से लेके गए या मेस से?
4: बाहर से जैसे वो लाए थे हम।
1: कैसे लेके गए आप उनको? लेके स्टूडेंट थे सारे?
4: नहीं स्टूडेंट नहीं, यहाँ से ले गए स्टूडेंट ही सर। हाँ।
1: और कितना लोग लेके गए यहाँ से?
4: लगभग 3-4 आदमी जिंदा लेके गए और बॉडीज भी लेके गए।
1: So basically, over 150 families have already come in. They've given their DNA samples to be matched with the bodies that have brought in. I was speaking to the lady there. She's a staffer here at the civil hospital. And what she says is that in their entire list of that they have, there is only one person who's not in, and that's the name of the survivor.
5: Basically, state government has, after this incident, made an order of 4 IS officers. To look in various capacities. So I'm looking after this DNA sampling exercise that we are doing here.
1: Ronit, आप local हैं?
6: हाँ, यहाँ मैं local रहता हूँ, पास में ही मेरा घर है। जब ब्लास्ट हुआ तो मैं बैठा था, खाना वाना खा रहा था और निकले हम लोग तुरंत ही। तो हम लोग ब्लास्ट की जगह पे पहुंचे, वहां पे प्लेन क्रैश हुआ था, किसी को अलाउड नहीं कर रहे थे अंदर जाना। तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग मिलके हम लोग यहाँ पे जो पीएम रूम है वहां पे पहुंचे। वहां मनीष सुतरिया साहब है जो हेड है, वो मेरे वहां पे, वो अकेले और कुछ स्टाफ वाले ही काम कर रहे थे। बॉडीज आ रही थी, फिर हम लोगों ने सबने मिलके वहां पे बॉडीज को उठाया, फिर ये रूम पूरा पीएम रूम पैक हो गया था, इतनी बॉडीज थी।
1: पोस्टमार्टम रूम पूरा
6: पैक हो गया, जो फ्रोजन एरिया था वहां पे भी बॉडीज थी, जो पीछे का बैक साइड का है, जो सामने बैक साइड का फ्रोजन एरिया वो भी पैक हो गया। फिर उन लोगों ने हमको बोला कि आप लोग थोड़ी हेल्प कर रहे हैं तो अब बॉडीज को आगे ट्रोमा सेंटर, जो पुराना ट्रोमा सेंटर था, वहां पे ले जाइए। फिर हम लोग वहां पे लेके गए ट्रोमा सेंटर को, और ट्रोमा सेंटर में से जितनी वहां पे से क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी, हमने सारी एम्बुलेंस को वहाँ पे रोका और वहाँ से हम लोग ने बॉडीज को अंदर रवाना किया।
7: मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? ऐसे से आप नीट खरीद सकते हो, गोली मेरे सर से नीटिया से आएगी। एक करोड़ मिल रूप तो देती हूँ, मुझे मेरा पापा, मुझे पापा वापस लाइए वाले को बोलो एक करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। आपके हिसाब से ही मेरे पापा गए हैं ना, आपको चेक करना था, पहले क्यों नहीं चेक किया? वो ऐसे हंसर के शिकार बनते हैं लोग, और ये एक करोड़ में खरीदोगे मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के लगते हो एयर इंडिया वाले? कुछ सुनते नहीं है एयर इंडिया वाले? एक करोड़ देंगे, एक करोड़ देंगे, क्या एक करोड़ देंगे? वो मैं आपको दो करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर भी हाँ ठीक मर गए तो वापस कीजिए, दो करोड़ मैं दूंगी आपको। चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को, क्या मजाक बना के लगते हो? आपकी सीधी जान को।
1: दैट्स व्हाट हार्ट ब्रेक लुक्स लाइक, दैट्स व्हाट हार्ट ब्रेक साउंड्स लाइक। Falguni, right there, has lost her father. She wants to give 2 crores. She wants to give 2 crores to Air India to get her father back. Her mother, her father, gone.

0: The story very quickly shifted from the accident site to the hospitals where the victims were taken in. Some of them in complete charred conditions, body parts. And with it came a flood of relatives in disbelief. Empathy for a television journalist is easier said than done. Very difficult to document grief, painstaking to document grief. How do you draw that boundary and yet respect people whose lives forever have turned upside down? Families of victims, one survivor, that was confirmed. That, to me, as a journalist, was the hardest part, because I remember me and my camera person stayed the course of the night at the hospital. Every 20 minutes, you would see a loved one walk in, a family walk in. Those who lived near came in quicker. Those who came in from other cities, some of them were flying in from London. And for the next 48 hours, to hold that grief in, to document that grief, has been, after COVID, my toughest assignment.
1: Mere 32 seconds, and that altered life forever. For survivors, for family members, who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
2: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ना ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं छह महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ना ऐसा है छह महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे है मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है
1: रोमिल वोहरा हैड जस्ट बेड गुडबाय टू हिज ब्रदर परवेज वोहरा एंड हिज 5-year-old डॉटर ऑन 12th जून 2025 व्हेन द न्यूज़ फ्लैश ऑफ द क्रैश ऑन हिज मोबाइल फोन शुक द ग्राउंड बीनीथ हिज फीट
3: अहमदाबाद से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में अहमदाबाद ही पहुंचा था 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद से फिर मैं इमीडिएट वहां से जाने के लिए वहां वापस रिटर्न जाने के लिए निकल गया अराउंड 15-17 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर का फासला सिग्नल सब तोड़ के अहमदाबाद सिविल पहुंचा था मैं सब वहां 12 जून को सब हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद भी मैंने सब वार्ड में ढूंढा है गुरुवार के दिन रात को अप्रॉक्स 9-10 बजे के तकरीबन हमको पता चल गया था कि सभी के सभी मेंबर डेथ हो चुके हैं क्योंकि अनाउंस हो गया था कि जिसके भी मेंबर हॉस्पिटलाइज फ्लाइट के अंदर थे उनको डीएनए सैंपल देना है
1: परवेज बोहरा हैड अनदर डॉटर एंड हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट दे वर इन लंदन परवेज़'स वाइफ एंड एल्डर डॉटर केम होपिंग He and his younger daughter were alive.
3: मेरी फैमिली का हाल तो पूरा टूट चुका है सब बिखर गया है मतलब हेल्थ कॉन्शियस से लेके मेंटली डिसपॉइंट से लेके सब कुछ टूट चुका है और मेरे ब्रदर की डेथ के बाद अप्रॉक्स आफ्टर 20 डेज मेरे ब्रदर का एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ जो उसकी ड्रीम थी कि ऊपर वाला, उससे ऑलरेडी उसको दो बेटियां थी, उसमें से एक बेटी चली गई, दो बेटियों के बाद उसके एक बेटे की ख्वाहिश थी जो ऊपर वाले ने पूरी की, लेकिन भाई उसको देखने के लिए नहीं रहा। और जो बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो भी अपने बाप को अब कभी भी देख नहीं पाएगा।
1: There were 14 people from Diu in that flight. No one survived. Faizan was one of them. He had come back from London on a vacation and got married days before the accident.
4: छह जून को वहां से निकला था, यूके से। मैं इधर था, मेरी मम्मी गुजर गई तो मैं इधर था, इसके नानी माँ के पास था, रजा लेके आया था। नानी माँ मना कर रही, बेटा अभी नहीं जाना, ये साल की अभी ईद गए ना, अभी ईद में जाना था। नहीं मेरे जाना है, मेरे वहाँ मेरे माँ के नाम की उजी करनी है ना, मेरे मेरे घर वाले के साथ शादी में एंजॉय करना है। तो बाद 10 दिन के 8 दिन की छुट्टी लेके आया था, वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी।
1: Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was going to London on 12th June 2025 to spend time with his daughter.
5: एक पिता के खोने का दुख, मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है।
6: 12 जून 2025 वाज द डे व्हिच शुक द एंटायर वर्ल्ड, द हॉरिबल डे फॉर द मोर देन 200 फैमिलीज हु लॉस्ट देयर क्लोज वंस, नियर एंड डियर वंस। वी आर एट द साइट आफ्टर ईयर, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द साइट व्हिच स्टिल gives the shows the pain and the grief of the family, how the damage was done.
1: There was one miraculous survivor. British citizen Vishwas Kumar Ramesh was seated next to an emergency exit in seat 11A. He escaped through a breach in the fuselage while everyone, including his brother, perished. With Brijesh Doshi in Ahmedabad, Bureau Report, India Today.
0: As we reported, we figured that this would be the deadliest civil aviation disaster globally in the 2020s and the first fatal hull loss of a Boeing 787 Dreamliner. Big questions started rolling in. What happened in those 32 seconds of IC-171? And honestly, it was the most difficult one to track. The recovery of the black box data didn't conclusively prove what was at fault. Was it technical? Was it human error? The investigation has now reached the court. The final comprehensive AAIB report is still pending. The loved ones of those on board IC-171 still have no answers.

0: वो मोइत्रा भी इधर आ सकती हैं आजकल, बहुत वो ममता बनर्जी की बात कर रही हैं, उनको लेकर डिफेंड कर रही
1: ये
0: हैं।
1: महुआ बनर्जी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के विरुद्ध बात करता है, अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध बात करता है। कभी कौन का बोलता है, कभी नहीं बोलता है, इसका कोई बात नहीं। कभी मन में क्या आएगा हम बोल नहीं सकते।
0: महुआ मोइत्रा आ सकती हैं, आप लोगों के साथ जुड़ सकती हैं।
1: राजनीति में कोई असंभव नहीं है, राजनीति में कोई असंभव नहीं है। जो आज हमारा सीएम है बंगाल का,
0: जी
1: वो तो पहले टीएमसी के था, अभी वो बीजेपी आया, आज सीएम बना। और सीएम बनने के बाद बीजेपी में जो काम किया है अभी वो स्टेट में, वो अच्छा काम किया है। तो ऐसा बोल नहीं सकते थे हम, कभी कौन पार्टी में रहेगा और कभी नहीं रहेगा, राजनीति में असंभव कोई नहीं।
2: Someone who's so enamored or is entrenched in love stories, what is your idea of love? What is a perfect love story for you, Imtiaz?
3: I have no idea. If I had any idea, I wouldn't be making stories in which this love stories would be popping up at all times. I feel that it's the lack of clarity that leads me into this kind of cinema.
2: Are you still looking for love?
3: Everyone is looking for love, but not in the most obvious ways.
2: You're finding perhaps there is a variety that you can have.
3: Not variety, right? Not variety in the sense of many partners.
2: No.
3: Variety in the sense
2: in
3: of
2: different aspects.
3: In different aspects of. And also, I feel that a love story connects you with your own self. I feel ultimately the story is with the relationship with your own self. And you know, I have this thing to say that a person who has a love relationship, if he has another relationship, he perhaps behaves in the same way in that relationship also. A passionate lover is always a passionate lover in every relationship of theirs.
2: Yeah.
3: Why is that so? It's perhaps something of their own desire that they want and they express whenever they feel that they have an opportunity or an object of love.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Shatrughan Sinha, Member of Parliament of the TMC. Shatrughan Sinha, appreciate your time here on India Today, sir. I'm looking at the soundbite that you gave earlier today, Mr. Sinha. You said it very clearly, you won't desert Mamata Banerjee in difficult times. And this is coming amidst all those, you know, rebellion that Didi is seeing at present. What makes Shatrughan Sinha stand firmly with Mamata Banerjee?
2: Simple reason. Thank you very much, Maria, for calling me. I must admit that when I fought the election in 2019 from Patna, where I lost or I made to lose, nobody came forward. The only one person of the highest stature, Mrs. Mamata Banerjee, she called me up, she offered me, she encouraged me, supported me, and asked me to go and fight the only by-election was being held in the country, fight from Asansol. I'd never been to the Asansol, never ever. The first time I went to Asansol, and by grace of God, with the support and love, affection of the people of Asansol and Bengal, I won the election with a record margin. That was the time when I realized that the only person, Mamata Banerjee, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, जिन्होंने मैंने ऑफर किया दिया और मुझे भेजा पार्लियामेंट में, पहली बार भी जीत कराया वहां से रिकॉर्ड मार्जिन से, सेकंड टाइम ऑल्सो विथ अ वेरी सिग्निफिकेंट मार्जिन आई वॉन द इलेक्शन. I have been there, I have won the election on Jodhapur symbol, and now it's the high time and right time, perhaps, to support the one and the only Mamata Banerjee in the hour of a crisis, a political crisis. इसलिए मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया, आज मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, कि मैं इस घड़ी में उनका साथ दूँ, और साथ ही साथ, मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप जोड़ा फूल पे जीत कर आए हो, आप जोड़ा फूल पर जीत के आने के बाद पार्टी को छोड़ रहे हो इस घड़ी में या तोड़ रहे हो, इससे तो अच्छा होगा आपको जाना है तो जाएं, इस्तीफा दें, जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव लड़ें, चुनाव जीत कर आए, आपका स्वागत होगा, वी ऑल विल वेलकम यू. But this is no way. कल तक आप सब दीदी दीदी दीदी कर रहे थे, दीदी के हाव, दीदी का हाव भाव चाल ढाल कॉपी कर रहे थे, कल तक आप दीदी के कॉपी कैट थे, और आज अचानक इस घड़ी में या किसी डर की वजह से या मजबूरी की वजह से या लालच की वजह से या भय की वजह से आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ये सही नहीं है. मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से हूं जो मानते हैं और कहते हैं, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड,
1: ओके,
2: वंस अ लॉयलिस्ट ऑलवेज अ लॉयलिस्ट.
1: इनफैक्ट वी आर शोइंग नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑफ यू एंड Mamata Banerjee टुगेदर, एंड आई विल आस्क द प्रोड्यूसर्स टू पुट दोज पिक्चर्स ऑफ Shatrughan Sinha. हियर इट इज, Shatrughan Sinha एंड Mamata Banerjee, अनदर वन, व्हाइल इट वाज इन द मिडल ऑफ अ कैंपेन. सो सर्टेनली यू से दैट वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड, शी स्टूड विथ यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, यू आर स्टैंडिंग विथ हर इन हर डिफिकल्ट टाइम्स. पर Shatrughan Sinha जी, यू नो यू आर अ वेटरन पॉलिटिशियन योर सेल्फ, डिड यू रियली एंटिसिपेट दैट अ पार्टी लाइक द तृणमूल कांग्रेस विल अनरैवल इटसेल्फ सो क्विकली? In it's been just over a month since the results, and here is a record number of people, MPs and MLAs, who are all set to desert Mamata Banerjee. Did you see this coming?
2: Nahi, Maria, nahi. In fact, I'm with you. We are on the same page. Never ever expected it would happen, and that too so soon. Abhi is tarah se unhone kiya hai. कि एकदम जैसा लगता है कि अभी तो जिस तरह से SIR का ड्रामा हुआ, जिस तरह से डिस्क्रिपेंसीज का ड्रामा हुआ, यानी सारे ड्रामे के बावजूद जिस तरह किया गया इलेक्शन में, शी स्टिल गॉट मोर देन 41% वोट्स. इतना ज्यादा वोट्स लाने के बावजूद इतना जल्दी थोड़े से लालच में या भय में या ईडी सीबीआई पता नहीं, मुझे नहीं कहना और ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, पर जिस भी रीजन से हो ये लोग छोड़ के जाएंगे, इस तरह जाने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं जाने की कोशिश करेंगे बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन। अभी तक स्पीकर साहब ने, चेयरमैन साहब ने अभी तक बताया नहीं कि उनको चिट्ठी क्या मिली है, इन्होंने नहीं बताया चिट्ठी में कितने नाम है, किसके किसके नाम है, ये सब नहीं बताया गया। अब एक चल रहा है, अफवाह चल रही है, चर्चा चल रही है, और इस तरह से मेरा नाम भी डाल दिया लोगों ने, इसलिए आज मुझे आना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई मैं उनमें से नहीं हूं, मैं सुख दुख में साथ देता हूं, सुख दुख में साथ निभाता हूं। मैं अपने नेताओं का, मेरी सिर्फ एक ही नेता है, एक ममता बनर्जी। मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही और किसी को मानता हूं।
1: शत्रुघ्न सिन्हा जी, यू नो ओवर द लास्ट फ्यू डेज अ नंबर ऑफ लीडर्स हु हैव क्विट टीएमसी और हैव फॉर्मड अ सेपरेट ब्लॉक एज इट हैज हैपेंड इन वेस्ट बंगाल इन द स्टेट असेंबली, दे हैव गिवन वन रीजन दैट दे वर अपसेट एंड दे कंटिन्यू टू बी अपसेट विद अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी इज नेफ्यू। How do you look at his working style? Do you also have some concerns about the manner in which he worked? You know, surprisingly, even today, Kalyan Banerjee said that Mamata Banerjee has to choose between Abhishek Banerjee or them. So it is almost like blood versus the party.
2: देखो पहली बात तो ये कि देव किम ने reason, हम सब ने logic दिया है, reason दिया है कि साहब इतना गड़बड़ था, या ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, या पहले ऐसा होता था। सवाल ये उठता है कि अगर पहले ऐसा होता था तो पहले क्यों नहीं कहा था, आज का ही दिन चुना क्या, मुहूर्त निकाला था आज के दिन कि आज जैसे जैसे जिस चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को डाला गया है, जिस चक्रव्यूह में फिर से वो संघर्ष कर रही है और संघर्ष के साथ शी इज अ स्ट्रीट फाइटर, वो एकदम बॉर्न लीडर नहीं है बल्कि स्ट्रीट फाइटर है, सक्सेस स्ट्रगल से सक्सेस अचीव किया है उन्होंने, आज उनको इतना परेशान किया जा रहा है, दिख रहा है कितने परेशान हो रही हैं, उस समय आप कंप्लेन बुक लेके आ रहे हैं। अरे ये सब बातें तो पार्टी के अंदर फिर कभी भी हो जाती। और जहां तक आपने कहा कल्याण बनर्जी की, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल वी हैव एंड नॉट ओनली बेस्ट पीपल, आई वुड कॉल हिम कल्याण बनर्जी एन इंटेलेक्चुअल पावर एक्सलेंस, one of the best leaders in the country, such a learned man. आज उन्होंने कहा है वो पर्सनल हो सकता है अभिषेक बनर्जी के साथ, कुछ गलतफहमी हो सकती है या कुछ गुस्सा हो सकता है, हो सकता है प्रोफेशनल रीजन हो, वो लॉयर की तरह जाते हैं वहां पर उनको मान सम्मान नहीं मिलता है या वो डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल नहीं मिलता है उनको, हो सकता है इससे भी उनकी नाराजगी हुई हो, but let's not forget what our Kalyan Banerjee has said, and he has said that he is with Mamata Banerjee and he shall always remain with Mamata Banerjee, wo unke wisdom ke sath hai Mamata Banerjee ke, to hum sab ka hi farz banta hai ki hum is waqt apna sath de Mamata ji ko aur uske baad bhi chhod ke ja rahe hain, kuch log shayad retire hone wale hain isliye 4 mahine pehle chhod ke ja rahe hain, kuch logon ke aur karan hai, kahin se offer aaya hai, ye offer dekh liye, pehle bhi bahut jagah se bahut logon ko aaya tha, aaj wo log kahan hain, कहीं ऐसा ना हो कि फ्राइडे नाइट स्टार बन के मंडे ट्यूसडे को सब सीन से गायब होना शुरू हो जाए। इन बातों को देखना चाहिए, समझना चाहिए।
1: स्पोकन लाइक अ स्टार देयर, फ्राइडे नाइट स्टार मंडे ट्यूसडे गायब हो सकते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, यू नो आई स्पोक टू काकोली घोष दास्तीदार, बिफोर दैट आई हैड ऑल्सो स्पोकन टू संदीपन हु इज an MLA who has, now been part of another block, which has been recognized in the assembly, Kakuli Ghosh Dastidar, who has resigned. They had reservations and they also said that they communicated their concerns in the party forum. Unke paas option nahi tha, isliye unhone choda, jabki unke concerns address nahi kiye gaye.
2: Option nahi tha, isliye choda? To phir jab achha waqt hota, tab kyun nahi choda tha? Aapne yahi waqt chuna hai. यानी ये घड़ी जो है मारिया, मैं कह रहा हूं ये शिकायत करने की घड़ी नहीं है, ये घड़ी लड़ने की नहीं है, ये घड़ी जुड़ने की है, ये घड़ी कुरेदने की नहीं है, ये घड़ी जख्मों पे मरहम लगाने की घड़ी है, जख्मों को और कुरेदने की घड़ी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि आप, पहली बात तो ये कह दूं, मैं काकोली की इज्जत करता हूं, प्रोफेशनली डॉक्टर रही हैं, और अच्छी लेडी होंगी, लेकिन मैं उतने अच्छे से नहीं जानता हूं उनको। मैं ना अभिषेक बैनर्जी को अच्छे से जानता हूं, ना काकोली को जानता हूं। मेरा सिर्फ दो ही टर्म है। इन लोगों में से कोई मेरा लीडर ना है ना शायद होगा। मेरी लीडर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। अगर उनसे कोई शिकायत है तो हम लोग मिलजुल के एक जगह बैठ के बात कर सकते थे। आज ही आपने वक्त चुना है, एक डिच करने पर जब आ गए, आपने फैसला कर लिया है, आप तलाश कर रहे हैं कैसे 19-20 सांसद मिल जाएं और 19-20 सांसद मिलके हम सेपरेट ग्रुप बनाएं। आप कहते हैं सेपरेट ग्रुप बनाएं, कानून कुछ और कहता है, संविधान कहता है कि सेपरेट ग्रुप बनाएंगे या फिर आप मर्ज करेंगे। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने बंगाल की बात की तो बंगाल के स्पीकर ने अभी तक कुछ नहीं बताया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, किस बेसिस पे किया है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अभी बहुत सारे पेंच लगे हुए हैं, बाकी हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, वो पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी यहाँ भी देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। मैं नहीं समझता हूँ ये जो कह रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं, नंबर में तो मेरा भी नाम शामिल किया था कि मैं भी हूं उसमें से। मैं तो आपके सामने खुल के कह रहा हूँ, मरिया के सामने जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ना मुझसे कोई बात हुई है, ना मेरा सिग्नेचर लिया गया है, ना मुझसे किसी ने कंसल्ट किया है, और ना किसी ने जरूरत की है कहने की कि पार्टी छोड़ दो, ममता जी को छोड़ दो। हाँ, जिन लोगों ने इनवाइट किया है मुझे, हमारे बीजेपी के भी फ्रेंड्स हैं और भी फ्रेंड्स हैं। चूंकि मैं बीजेपी से आया हूँ, करीब 30 years आई हैव बीन इन बीजेपी, सम ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स आर स्टिल देयर। उन्होंने मेरा भला सोच के ही मुझे इन्वाइट किया होगा। मैं ऐसे भी सर्वदल प्रिय हूँ, सारे तरफ चारों तरफ मेरे दोस्त हैं, दे इन्वाइटेड मी, आई एम ग्रेटफुल टू देम। बट मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, सुख दुख की घड़ी में, मैं ममता जी का साथ निभाऊं। और इसीलिए आई इशूड ए 3-line whip ऑन माई बिहाफ एंड आई हैव कन्वेड इट टू ममता जी ऑल्सो। और मेरा 3-line whip ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है फिलहाल किसी और पार्टी में जाने का या किसी और दिशा को देखने का।
1: बिफोर यू इशूड दैट 3-line whip, शत्रुघ्न सिन्हा जी, यू ऑल्सो पुट आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट इन विच यू कॉन्ग्रेचुलेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैनी सॉ दैट एज अ मिक्स्ड सिग्नल, हाउ शुड दैट ट्वीट बी रेड?
2: नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल, अगर आपने ट्वीट को पढ़ा होगा
1: जी,
2: तो इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आई विश, मैं अपने गॉड ब्लेस किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, नॉट ओनली आवर फ्रेंड, माय फ्रेंड, बट आल्सो ही इज अ फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, फ्रेंड ऑफ द नेशन। और 12 साल उनके पूरे हुए हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ आपके या बाकी लोगों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो मेरे भी हैं। कुछ वैचारिक मतभेद कई बार हो जाते हैं दोस्ती यारी में भी, ऐसे भी पॉलिटिक्स में, बट ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं कदर करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ उनके लंबी आयु की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनके ऊर्जावान रहने की मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इसीलिए आज मैंने उनको विश किया है 12 साल पूरा होने पे, और इसको उसी नजरिए से देखना चाहिए।
1: शत्रुघ्न सिन्हा जी, always a pleasure speaking to you. Before I let
2: same
1: you go,
2: here, Maria.
1: Just one question: who is this BJP leader and your friends, and why did they approach you right now?
2: No, I've got many friends. They are wonderful people. उन्होंने हमें बुलाया है. Why should I name them, Baba? I shouldn't name them. They are our friends. उन्होंने अच्छा मेरा अच्छा सोच के ही कहा, उनके नजर से, उनके point of view से, they must have thought कि इनका शत्रुघ्न जी का कुछ और भला होना चाहिए। ही डिजर्व्स इट। 30 साल बीजेपी में रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। 30 years आई बीन इन बीजेपी, वन ऑफ अ मेंबर, जो पार्टी जब दो सीटों की थी, ऑपोजिशन में थी, तब से मैं आया था। बाद में हो सकता हमें कुछ महसूस किया और कुछ लोगों की वजह से कि परहैप्स सम ऑफ देम आर नो मोर एनी, अभी है भी नहीं दुनिया में, कुछ लोगों की वजह से या कुछ और फील हुआ हो कि अब लोकशाही नहीं चल रही है वहां, तानाशाही चल रही है, ऐसी फीलिंग हुई हो मुझको, और उसके बाद हम वहां से आए। पर मेरे दिल में उनके लिए कोई कटुता नहीं है। मेरा ऐसा ही मानना है हमेशा कि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट जो हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, हैं तो इसी सोसाइटी से, हैं तो हमारी फ्रेंड्स, हमारी रिश्तेदार, और हम लोग में ये जरूर कहते हैं कि मतभेद हो ओ, कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए. आई हैव गॉट ग्रेट लव एंड रिगार्ड्स फॉर सम ऑफ द ग्रेट लीडर्स इन भारतीय जनता पार्टी, इंक्लूडिंग द फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और माई फ्रेंड फिलोसोफर गाइड गुरु एंड अल्टीमेट लीडर श्री लाल कृष्ण अडवाणी. मुझे भारतीय भारत रत्न नाना साहब नाना जी देशमुख लेकर गए थे भारतीय जनता पार्टी में. तो मेरा पर्सनल लव, पर्सनल रिगार्ड तो बहुत सारे लीडर्स के लिए है, पर आज के दिन में पॉलिटिकली स्पीकिंग मेरी लीडर एक हैं, और वो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी.
1: In no uncertain terms, that is Shatrughan Sinha saying Mamata Banerjee is his leader. Thank you so much, sir, for speaking to India Today.
0: You are watching India Today.
3: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
5: I have no idea how this election is going to play out,
4: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है. आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है. हाँ, आप और कुछ निकलते जा रहे हैं, ये पार्टी आपको और क्या चाहिए. आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है.
7: So Apple WWDC 2026 has indeed come to a conclusion, and lots of updates coming in for Apple users. The biggest of them all is the new Siri AI, which a lot of Apple users will definitely look forward to. Siri gets a completely redefined look and also becomes more contextual, more intuitive. Apple intelligence also gets more closely knitted into the entire ecosystem, and that's something that Apple users will definitely appreciate, because now Google's integration is going to make your overall experience much better. Some child control, let's say you have minors using Apple devices and also exposed to the Apple ecosystem, well, parents can control some of these features now and have a closer look of what their child is doing when they're using Apple ecosystem and devices. So these are some of the updates that have come in from WWDC 2026. But again, the biggest announcement is around how Apple intelligence is now becoming smarter, more intuitive, and more useful for a lot of the users who are not only on the iPhone but also across different devices. So yes, big updates coming in for all of the Apple users, and something to look forward to. Now these features, as Apple said, will be rolled out in the coming months. It's not going to come immediately, but yes, developers will be able to test out some of the features and find bugs if there are any. So yes, I feel that this WWDC was more about polishing some of the existing features and making AI genuinely useful, and also making sure that the data that the users have stays protected, stays behind private cloud and also on the device, so that other, well, they say that other AI devices can exploit your data. That's something that's not happening in the Apple ecosystem. So yes, big updates coming in from Apple WWDC 2026, and lots to look forward to for Apple users in the coming months.

ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था। जिस तरह से आप बूथ बूथ के आंकड़े आ रहे हैं आपने देखा होगा, एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा कपट था, छल था। और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है, हाँ, आप और कुछ निगलते जा रहे हैं, ये पार्टी, आपको और क्या चाहिए? आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है,

0: बिरयानी खाई वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा
1: टाटा। और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
2: तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है?
3: अ कॉमेडी स्टेज।
2: तुझे तो ये भी लगा था वो तुझसे प्यार करेगा।
3: अ वायरल क्लिप।
0: वो कहती क्या खिलाओगे, मैं तू बता क्या खाएगी।
3: एंड नाउ अ कंट्रोवर्सी That's spiraling far beyond the punchline. Stand-up comedian Praneet More finds himself at the center of a growing storm after clips from his show sparked outrage across social media.
0: वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा।
3: The backlash has now reached the highest political levels. Maharashtra CM Devendra Fadnavis has weighed in, saying freedom of expression cannot become a license for misogyny or remarks that undermine the dignity of others. And it's not just politicians raising questions. The All India Medical Students Association has strongly condemned what it calls the insensitive portrayal of cadavers and body donors. The association says human remains are not comedy props, stressing that body donors form the foundation of medical education and deserve the highest dignity and respect.
2: तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है।
1: स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
2: तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है?
3: Meanwhile, the controversy moved from social media timelines to legal files. Maharashtra Cyber Cell registered an FIR against Praneet More and others, alleging obscene, offensive and objectionable remarks against women circulated online. The National Commission for Women or NCW also took cognizance of the matter, summoning both More and audience member Himanshu Jangra on June 22nd. Bureau Report, India Today.
0: वो कहती क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Shatrughan Sinha, Member of Parliament of the TMC. Shatrughan Sinha, appreciate your time here on India Today, sir. I'm looking at the soundbite that you gave earlier today, Mr. Sinha. You said it very clearly, won't desert Mamata Banerjee in difficult times. And this is coming amidst all those, you know, rebellion that Didi is seeing at present. What makes Shatrughan Sinha stand firmly with Mamata Banerjee?
2: Simple reason. Thank you very much, Maria, for calling me. I must admit that when I fought the election in 2019 from Patna, where I lost or I made to lose, nobody came forward. The only one person of the highest stature, Mrs. Mamata Banerjee, she called me up, she offered me, she encouraged me, supported me, and asked me to go and fight the only by-election was being held in the country, fight from Asansol. And now it's the high time and right time, perhaps, to support the one and the only Mamata Banerjee in the hour of a crisis, a political crisis. इसलिए मैं उनके साथ हूँ. उन्होंने मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया. आज मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस घड़ी में उनका साथ दूं. और साथ ही साथ मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप जोड़ा फूल पे जीत कर आए हो. आप जोड़ा फूल पर जीत के आने के बाद पार्टी को छोड़ रहे हो इस घड़ी में या तोड़ रहे हो, इससे तो अच्छा होगा आपको जाना है तो जाए, इस्तीफा दें. जिस पार्टी में जाना उस पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर आए, आपका स्वागत होगा. वी ऑल विल वेलकम यू. बट दिस इज नो वे. कल तक आप सब दीदी दीदी दीदी कर रहे थे, दीदी के हाव, दीदी का हाव भाव चाल ढाल कॉपी कर रहे थे. कल तक आप दीदी के कॉपी कैट थे और आज अचानक इस घड़ी में या किसी डर की वजह से या मजबूरी की वजह से या लालच की वजह से या भय की वजह से आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ये सही नहीं है. मैं उनमें से नहीं हूं. मैं उनमें से हूं जो मानते हैं और कहते हैं वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड. मैं सुख दुख में साथ देता हूं, सुख दुख में साथ निभाता हूं. मैं अपने नेताओं का, मेरी सिर्फ एक ही नेता है, एक ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी. मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही और किसी को मानता हूं.

0: for Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था.
0: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
0: She used digital resources extensively during her preparation.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरे मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: mere 32 seconds, and that altered life forever. For survivors, for family members, who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
1: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ना ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं छह महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ना ऐसा है छह महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे है मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है
2: ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था जिस तरह से आप बूथ बूथ के आंकड़े आ रहे हैं आपने देखा होगा एक षड्यंत्र था बहुत बड़ा कपट था छल था और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है हाँ आप और कुछ निकलते जा रहे हैं ये पार्टी आपको और क्या चाहिए आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है

0: For Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट आता था.
0: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
0: She used digital resources extensively during her preparations.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरे मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था। जिस तरह से आप बूथ बूथ के आंकड़े आ रहे हैं आपने देखा होगा, एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा कपट था, छल था। और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है, हाँ, आप और कुछ निकलते जा रहे हैं, ये पार्टी, आपको और क्या चाहिए? आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है,

0: mere 32 seconds, and that altered life forever. For survivors, for family members, who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
1: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ना ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं छह महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ना ऐसा है छह महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है, कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है

0: staffer Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई, किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था।
0: चारू अचीव दिस फीट विदाउट एनरोलिंग इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट।
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे, तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था।
0: She used digital resources extensively during her preparations.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, इंस्टा पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरा मैनेज करती थी। बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बस उस पे मैं टेस्ट देती थी।
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.

0: which is going to take center stage just in a while. But a struggle for us is to reach that particular village of Maspur, which is in Antagarh. We have just started the trek of this small mountain, and it's a 3 to 3.5 kilometer long stretch and trek that we have to do. And in fact, remember, we are just going to do the story and leave from here. But this is the everyday struggle of the people of Maspur, because the kind of struggle that we are going to do today, just to give you the story, the administration regrettably couldn't do this needful measure just to give the people what they needed all these years.
1: For people like Subeh Singh, this is not trekking, it's a way of daily commuting.
0: कितना दूर है और यहाँ तो आपने मतलब इस गर्मी में इतना किलोमीटर चढ़ के रोजाना जाना, हम लोग की हालत खराब हो रही है और आप बिल्कुल एकदम चिल खड़े हैं यहाँ पे. इनको कुछ नहीं हुआ है, ये अभी और ऐसे चल के बिल्कुल इनकी सांसें नहीं फूलने वाली है. ये रोज आना जाना है क्योंकि
2: लगातार जी रोज आना जाना चलता है,
0: रोज
2: चलता है आना जाना.
0: लोग चावल वावल लेने भी सोसाइटी जाते होंगे तो उसको बोझ लेकर आते हैं. 35 किलो का,
2: 35 किलो को कंधे पर बोझ लेकर इधर चढ़ते हैं.
0: यहाँ पे हमको चलने में मुसीबत हो रहा है, आप 35 किलो बोझ के साथ चढ़ते हैं?
2: हाँ मैम.
1: द इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट टुक इयर्स टू रीच मासपुर. It now awaits electricity to arrive. By these poles across the hillside, women of this area make an arduous journey as evening approaches. Not for work, not for cooking, but for water. Twice a day, every day. They walk miles and almost always in half darkness to fetch drops of life from a small pool trapped between rocks. It's stagnant, but that's the only source of water for these people.
0: कितने बजे पानी भरने आते हो आप यहाँ पे?
3: 5 बजे
0: सुबह का.
3: हाँ.
0: और यहीं से पानी भरते हो?
3: हाँ, यहीं से भरते हैं.
0: बीमार नहीं होते ऐसे पानी को पीके?
3: होते हैं बीमार भी, गंदा पानी.
0: अपने बच्चों को भी यही पानी पिलाते हो आप लोग?
3: हाँ, पीते पिलाते हैं.
1: People fall sick. In monsoon, this water source turns muddy. With no other option available, this pond is their savior.
4: सर्दी बुखार तो हमेशा ही बच्चे लोगों को तो परेशानी करते हैं.
0: हाँ.
4: बच्चे लोगों को एकदम परेशानी करते हैं. अभी भी ये बच्चे बीमार है, बुखार वगैरह पकड़ी है, इसको सर्दी काशी पकड़ी है. अभी
0: सरकार से क्या कहना चाहोगे?
4: अब सरकार से तो हम कहते कहते थक गए हैं. अब 50-60 साल से यहाँ बैठा हुआ गांव, पूर्वज गांव है और यहाँ का देवता को भी बड़ा देव माना जाता है. हमारे कोलर परगाना का, वो कोलर परगाना का बड़ा देवता माना जाता है. फिर भी हम लोग देवताओं की तरफ से भी मांगते मांगते हम लोग थक गई. हम लोग कलेक्टर के यहाँ भी जाते जाते हम लोग थक गई.
2: विगत 30-35 सालों से यहाँ बोर के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमेशा जाते हैं अशासन से ही हम लोगों को दखल देते हैं. पता नहीं कब तक यहाँ बोर कनन होगा, या तो कहा जाए आदिम काल के आदिमानव की तरह ही हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं. जो काना बदोशी हैं हम लोग, यहाँ कहा जाए कि शासन से सिर्फ चावल मिलता ही, इसी वजह से कुछ तो मिलता है, या तो कंदमूल खाकर ही जीवन यापन करते हैं यहाँ के वनवासी.
1: Their applications and appeals wait the nodding green signal through red tapes of the administration.
5: पिछले 2-3 महीने में हमने लगभग जिले में 180 से 190 बोर सैंक्शन कर दिए हैं, जिनको ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है. कुछ गांवों पे अभी भी मांग आ रही थी, जो अभी एक सूचना मिली उसके तारतम्य में आगामी 2-4 दिन के भीतर सैंक्शन होते हुए बारिश के पहले यानी 15 जून के पहले किसी भी हालत में वो गांव में भी पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी. इसमें राज्य शासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और तत्काल हम लोग कार्य करेंगे.
1: नॉट वेरी फार फ्रॉम मासपुर, दली राजहारा इज नोन एज द आयरन ओर कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. Iron extracted from these hills has helped build industries, cities and livelihoods. But in a cruel twist to the tale, people living in the shadow of mining wealth struggle for something as basic as water. The municipality supplies water twice a day, but locals say it is insufficient.

0: नल बहुत लीकेज है, लीकेज में पानी गंदा आता है, उसमें पानी छदी लगा पानी भरना पड़ता है। इस बात को पार्षद के पास लग गया, तुरंत सौ के पास लेकर नगर पालिका में गया, लेकिन कोई ध्यान लगाया।
1: The government launched the Jal Jeevan Mission in 2019 to ensure water reaches each household in the country by 2024. Utawa village in Dhar district, Madhya Pradesh. Jal Jeevan Mission pipes are laid, but there is no water supply. Women traverse difficult terrain to reach the water source to quench thirst, to serve daily needs.
2: उटावा गांव के संघर्ष की कहानी बयां करती ये सबसे डरावनी तस्वीर है। मैं तकरीबन जमीन से, यानी वो पोखर जहां से ये महिलाएं पानी भरती है, उसे तकरीबन 30 फीट ऊपर खड़ा हूं, और इससे 20 फीट और ऊपर इन महिलाओं को जाना है, और महिलाएं छोटे बच्चे इसी तरीके से रोजाना यहां से पानी भर के अपने गांव तक जाते हैं। जो छोटा सा पोखर है जहां से जमीन से पानी धीरे धीरे करके रिस करके 2 घंटे में उस पोखर को भरता है, और फिर उस पोखर से ये पूरा गांव पानी भर के एक साथ इसी तरीके से ये खाई पर चढ़ के अपने गांव पहुंचता है। और आप इनकी हिम्मत का अंदाज़ा लगाइए या फिर इनकी मजबूरी देखिए कि इस पथरीले रास्ते ऊबड़ खाबड़ चट्टानों के बीच में से होकर के ही उटावा गाँव की ये महिलाएँ और बच्चे रोज़ाना पीने के लिए और बाकी दैनिक जरूरतों के लिए इसी पानी पर निर्भर होते हैं।
1: द वॉटर इज नॉट फ्री फ्लोइंग आइदर, इट टेक्स 2 hours फॉर द पिट टू फिल अप, वुमेन वेट पेशेंटली टिल देन।
2: काकी, ये क्या रोज आते हो आप लोग, तो कितना समय लगता है इसमें, और ये पानी कहाँ से आ रहा? फिर
3: एक दोपहर हो जाता है, पानी भरते भरते लाइन लगती है, दोपहर तक 12 बजे तक हम जाते हैं, खाना खाते हैं पानी भर के, और माल ढोर के लिए जाता है। बारिश के टाइम में हवा चलती है, पेड़ गिर जाता है। एक मेरी जेठानी इधर गिर के पेड़ गिरा तो वो शांत हो गई। अच्छा। और भी सारा पेड़ है, गिर जाता है तो हमारा क्या नुकसान होता है। हम इधर से भरते भरते दोपहर आ जाती है, कब हम खेती का काम करते हैं, कब माल पानी को पानी पिलाता है।
2: सुबह आप कितने बजे आ जाते हो?
3: यहाँ तो हम 6-7 बजे से आते हैं सुबह से।
2: हाँ, सुबह 6-7 बजे से?
3: 5 बजे से भी आता है।
2: अच्छा।
3: 5 बजे से 4 बजे।
2: ये सब भरने में कितना समय लगता है? सब भर के वापस कब जाते हो गांव आप?
3: 12-11 बज जाती है
2: दोपहर के।
3: हाँ, 6 घंटे
2: कम से कम।
1: The hard part of this is not climbing down to this pit, but to climb up with liters of water filled containers. India Today correspondent faulted.
2: लम्मा जी मैं कर दूं?
1: And climbed up the whole route with her load of water. The village is just 60 kilometers from the Dhar district headquarters. Yet interdepartmental blame game ensures failure of the Jal Jeevan mission here.
4: 2 साल से लगातार अभी योजना चल रही थी, परंतु इस वर्ष गर्मी के कारण जो डगवल विभाग द्वारा किया गया था उसमें पानी जलस्तर पूरी तरह से समाप्त खत्म हो गया है, परंतु नलकूप में अभी जलस्तर कम हो गया। हमने उसमें पंचायत के माध्यम से पाइप बढ़ाकर योजना को चालू किया है, परंतु पर्याप्त पानी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसी वर्ष माह अप्रैल में नवीन नलकूप का खनन पुनः किया गया, परंतु उसमें भी जल आवक क्षमता कम है। उस नवीन नलकूप में हमारे द्वारा पंचायत को निर्देश दिए गए कि उसमें नवीन मोटर डाली जाए ताकि ग्राम के समस्त घरों को पानी मिल सके।
1: Over 600 million Indians face high to extreme water stress, according to Niti Aayog's Composite Water Management Index. As many as 2 lakh people die every year from inadequate access to safe drinking water. Across the fertile plains of Punjab and Haryana, the once abundant groundwater that powered the Green Revolution is rapidly vanishing. Decades of intensive paddy wheat cultivation, unchecked tube well extraction, inefficient canal systems, industrial pollution, and climate pressures have pushed the water table into a steep decline in many areas. In Fazilka district of Punjab, the crisis has boiled over into open protest. Farmers in villages like Bohar and Kalar Khera along the canal bearing the same name are furious that tail end areas receive little to no canal water despite government claims of reaching every field. In Mansa, the water table's relentless drop has forced farmers to abandon traditional engines and monoblock motors. Submersible pumps are now sunk 200 to 300 feet deep using specialized techniques.
5: ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਜੀ 40,000 ਚ 50 ਚ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 100 ਫੁੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜੇ 500 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੈਵਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-10, 20-20 ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
1: Manpreet Singh of Sangrur has been witness to the crisis gripping many Punjab districts. Decades of large-scale paddy cultivation have accelerated groundwater depletion.
6: ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਾਊਗੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 20-25 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 25 ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਖਤਮ ਆ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ 5-4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਲੈਣਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ
7: ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ
6: ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਧੁੰਦਲਾ ਗਿਆ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆ ਜਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
1: Punjab's world-renowned basmati rice, prized for its aroma, long grains and high market value with record exports, contributing significantly to India's basmati trade, has become one of the biggest contributors to the state's deepening groundwater crisis. It requires high water-intensive cultivation. Consuming approximately 4,000 to 5,000 liters of water per kilogram produced, with a heavy dependence on groundwater irrigation in the region.
8: पंजाब में कई जगह पे डार्क जोन बन गए हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी कल को अब ये जो बासमती बेसिकली है या धान है वो बेसिकली पंजाब की फसल नहीं है लेकिन ज़्यादा कमाई के चक्कर में हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको उगा रहे हैं क्योंकि इसमें उसको लगता है कि मेहनत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है इसलिए वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं
1: पंजाब इज फाइटिंग हार्ड बट द टाइम इज नॉट टिकिंग इन इट्स फेवर
9: लेकिन ये बताइए ना कि अब जो क्राइसिस देश फेस करेगा जब आप एथेनॉल की कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ रही है अगर मैं आप ही की रिपोर्ट थी एंड अगर मैं करेक्ट हूं तो मुझे मैं करेक्ट नहीं हूं तो मुझे बताइए उस रिपोर्ट में कहा गया कि 10,000 लीटर एथेनॉल का 1 लीटर जो एथेनॉल प्रोडक्शन होगी उसके लिए उतना पानी चाहिए दिस इज डबल देन व्हाट पंजाब डज फॉर पैडी पंजाब का तकरीबन 3,000 से 5,000 लीटर के बीच में कंजम्पशन है 1 लीटर या 1 किलो राइस के लिए ठीक है लेकिन यहां तो एथेनॉल के 1 किलो के लिए अगर आप ही की रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं वो कहती है कि 10,000 लीटर है कौन सा एक्सपर्ट बोला मुझे बता दीजिए देश में कि ये पानी का इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है मुझे बताइए क्या हमारी हमारे वो जितना कंसर्न हम दिखाते हैं वो यहीं तक लिमिट है कि भाई कहां आम आदमी को मार पड़ेगी देर इज एन एफर्ट नाउ कि भाई इसको इसकी सप्लाई को आईसीआर कह रहा है कि इसकी सप्लाई को कॉस्ट उसका बेनिफिट एनालिसिस किया जाए जो कैनाल वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका किया जाए ताकि हम देख सकें उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो कैनाल के ऊपर ज्यादा बेस हो विच इज परफेक्टली राइट कि वो होना चाहिए क्योंकि कैनाल इरिगेशन है पंजाब में लेकिन कैनाल का ओवर द इयर्स वी हैवंट बॉदर्ड अबाउट कि कैनाल से ज्यादा वो ध्यान दिया जाए उसका
1: इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा अनदर क्राइसिस इज ब्रूइंग चरखी दादरी इज स्टेयरिंग एट अ सीवियर वाटर शॉर्टेज विद अ वाटर टेबल प्लंजिंग 10 टू 15 फीट एनुअली इट हैज रिस्क्ड द फर्टाइल एरिया टर्निंग इनटू अ डेजर्ट
10: डाटा वगैरह देखते हैं ऑफिस के अंदर पुराना हिस्टोरिकल तो जो 95 में बाढ़ मतलब फ्लड आई थी अपने हरियाणा में तो उस टाइम के बाद से रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है और इसका दूसरा मेन रीज़न है यहाँ पहले 2000 से पहले पैडी की फसल नहीं होती थी धान की फसल जो हम बोलते हैं वो यहाँ इस एरिए में नहीं थे बाजरा और कॉटन मेन क्रॉप थी यहाँ की लेकिन जब से पैडी लगनी शुरू हुई है तो पानी की ज्यादा वो है यहाँ पे
11: पहले से अब पैदावार कम हो रही है पानी की वैरायटी भी कम है और खर्चे ज्यादा हो रहे
1: एक्सपर्ट्स कीप रेजिंग द रेड फ्लैग
12: लगातार भूजल स्तर के गिरने से
7: बहुत नुकसान की संभावना और बढ़ती जा रही है, फायदा कोई नहीं है। हर साल 10 से 12 फुट गिरता ही चला जा रहा है और आज तक भी ऐसा लग रहा है कि और भी नीचे जा सकता है, और जैसे ही गहराई नीचे जाएगी पानी का जो गुणवत्ता है वो भी गिरती चली जा रही है।
1: There are contrasting realities as well. In Rohtak and Sonipat, water table has paradoxically risen due to canal irrigation and the 1995 floods. But the water is largely saline, unfit for drinking or irrigation.
12: मेरे याद है मैंने 2003 में मेरा बोर बनाया था, जब सवा हमारे नो पाइप 20 फुट का एक पाइप होता है तो नो पाइप पर था जी, आज मेरे बोर में 16 पाइप।
1: Near Sonipat, there are villages that face acute drinking water shortages. And contamination from factory effluents.
13: इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आज घोषणा की है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसे 39 ऐसे ब्लॉक तो डार्क ब्राउन में आ चुके हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे कैनाल हैं, इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की श्रुति चौधरी मंत्री थी, कुछ ऐसे जो हमारे कैनाल के वहां पर ट्यूब लगाएंगे जिससे कि हमारा जो वाटर लेवल है उसमें उसका इजाफा हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की।
1: The groundwater table's decline is not just an agricultural issue. It threatens food security, public health, and rural economies in India's breadbasket. India is the largest user of groundwater in the world, consuming over 25% of the global total. And 70% of that groundwater is now contaminated with fluoride, arsenic, nitrate, or uranium. Per capita water availability currently stands at 1,486 cubic meters, already below the international water stress threshold of 1,700 cubic meters. It is projected to fall to 1,140 cubic meters by 2050, well into severe scarcity territory. By 2030, Niti Aayog estimates the demand will be double the available supply. The riverine ancient country depends on its glaciers in the north to feed its rivers and monsoon water in the south to energize the peninsular water bodies. With glaciers melting and a not-so-normal monsoon warning, the road ahead looks grim.
14: This year may turn out as a deficit year, rainfall deficit year or drought year. So our agriculture will more likely survive on the cost of pumped groundwater. Now, these years put additional pressures on groundwater sustainability and groundwater system. So, effort should be made or being made to recharge artificially and recharge to the aquifers from where we are pumping directly.
1: Indian cities, be it Mumbai by the Arabian Sea or Hyderabad in the middle, Chennai by the Bay of Bengal, all suffer from water shortage in the summer and then get routinely flooded every monsoon. The paradox of the situation hits home when the taps run dry. But roads turn in canals, when glacier cover recedes and farmers cry, when women risk life for water on a daily basis. Because though surrounded by water, India is running dry, fast and furious.

ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था। जिस तरह से आप बूथ बूथ के आंकड़े आ रहे हैं आपने देखा होगा, एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा कपट था, छल था। और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है, हाँ, आप और कुछ निकलते जा रहे हैं, ये पार्टी, आपको और क्या चाहिए? आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है,

0: is headed towards a rupture. Mamata Banerjee is facing her biggest test yet as rebel TMC MPs are set to meet West Bengal Chief Minister Shuvendu Adhikari tomorrow, after which crucial meeting of the rebel MPs with the Speaker is expected to happen on Monday. Amid this, another MP could be gravitating towards the dissent camp. Senior MP Sudeep Bandyopadhyay was seen meeting with Union Minister Bhupendra Yadav, accompanied by rebel MP Shatabdi Roy. If Bandyopadhyay joins the group, the numbers on the rebel camp would rise to 20. Remember, rebel Lok Sabha MPs wrote to Speaker Om Birla seeking recognition as a separate group. The letter has the signatures of 19 MPs backing the move. Rebel MP Jagdish Barma Basunia has said that all 19 MPs who signed the letter will be meeting CM Shuvendu and the Speaker Om Birla, adding that senior party MP Kalyan Banerjee might join them as well. He has also said that they will ask for a separate seating allocation and demand the Speaker to recognize them as the real TMC. Meanwhile, a day after senior MP Kalyan Banerjee slammed Bhaipo Abhishek for his arrogance, he has said that he forgives Abhishek as he is like his son and fathers always forgive their sons. This is after Abhishek earlier in the day sought to downplay the differences, saying he respects the veteran leader.
1: Jaane dijiye. सुदीप दा चला गया, बहुत आदमी चला गया, सुदीप दा भी चला गया, उसमें क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों को इलेक्शन में खड़ा होगा ना नहीं खड़ा होगा, तो इलेक्शन में जब खड़ा होगा तो पब्लिक ने उनको शिक्षा दे देंगे। सुदीप दा का तबीयत भी अच्छा नहीं था, सुदीप दा कभी पार्लियामेंट में नहीं जाते थे, सिर्फ वोट देने के लिए जब जब था वोट देने के लिए जाते थे। गए पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा। हम लोग को पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ए विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा।
2: जो नए नए सांसद हुए हैं या विधायक हुए हैं उनका मन में जोर नहीं था, वो सोच रहे थे कि अपने को क्या होगा, तो जल्दी जल्दी निकल गए। निकल के अभी उसको कोई पोजीशन नहीं मिला, अभी तक तय नहीं है कि संसद में जो लोग निकले हैं उसको बीजेपी में दिया जाएगा कि नहीं।
3: तो सुदीप बैनर्जी लॉबी करते थे, वो तो बहुत दिन से लॉबी करते थे, वो एक पहले भी एक बार तृणमूल से दीदी को हाथ छोड़कर भाजपा चला गया, अलग हो गया था, सस्पेंड कर दिया था पार्टी, तो उनका आदत है, उनका एक प्रॉब्लम है। एंटायर तृणमूल वर्कर्स डिड अ लॉट फॉर हिम, द वोटर्स who are anti-Bhajpa and in favor of Mamata Banerjee voted for him. And now he is sitting with Bhupen Jadavji's resident.
4: पूरा पश्चिम बंगाल ने TMC को reject कर दिया, Mamata Banerjee को reject कर दिया, Abhishek Banerjee को reject कर दिया, और जब कुछ नहीं मिल रहा था, जब सत्ता से हट गया तब पब्लिक ने हटा दिया। उसके बाद वो लोग क्या शुरू किया, अपना जो बचे बुचे MLA से उनसे साइन चोरी करना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी। तो नेचुरली वो डर रहे कि उन लोगों का जो जमीन है जायदाद है सब कुछ अगर हड़प लेता है अभिषेक बनर्जी, तो इसी डर से सब भाग जा रहा है अभिषेक बनर्जी से।
5: TMC के साथ कोई नहीं रहेगा, ये पूरा कोरप्टेड पार्टी, ये बुआ भातीजे का एक गवर्नमेंट था, तो इसलिए कल्याण सीनियर हो सकते लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है पार्टी में।
0: The Trinamool Congress's troubles seem far from over after police reached the Kolkata residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee at 2 a.m. to conduct searches in connection with an alleged land scam investigation. We are getting you this report.
6: Drama unfolded once again at the residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee in Kolkata's Kalighat. Police raided Abhishek Banerjee's residence in search of his personal assistant, Sumit Roy. The case pertains to alleged land grab and financial irregularities case linked to arrest

0: for Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था.
0: चारू अचीव दिस फीट विदाउट एनरोलिंग इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट.
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
0: She used digital resources extensively during her preparations.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरा मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: अभी तक तय नहीं है कि संसद में जो लोग निकले हैं उसको बीजेपी में दिया जाएगा कि नहीं।
1: तो सुदीप बैनर्जी लॉबी करते थे, वो तो बहुत दिन से लॉबी करते थे, वो एक पहले भी एक बार तृणमूल से दीदी को हाथ छोड़कर भाजपा चला गया, अलग हो गया था, सस्पेंड कर दिया था पार्टी। तो उनका आदत है, उनका उनका एक प्रॉब्लम है, एंटायर तृणमूल वर्कर्स डिड अ लॉट फॉर हिम, द वोटर्स हु आर एंटी भाजपा एंड इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी वोटेड फॉर हिम, एंड नाउ ही इज सिटिंग विद भूपेन यादव जी रेसिडेंट।
2: पूरा पश्चिम बंगाल ने टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया, ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, अभिषेक बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, और जब कुछ नहीं मिल रहा था, जब सत्ता से हट गया तब पब्लिक ने हटा दिया। उसके बाद वो लोग क्या शुरू किया, अपना जो बचे बुचे एमएलए है उनसे साइन चोरी करना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी। तो नेचुरली वो डर रहे कि उन लोगों का जो जमीन है, जायदाद है, सब कुछ अगर हड़प लेता है अभिषेक बनर्जी, तो इसी डर से सब भाग जा रहा है अभिषेक बनर्जी से।
3: टीएमसी के साथ कोई नहीं रहेगा, ये पूरा कोरप्टेड पार्टी, ए बुआ भतीजे का ये गवर्नमेंट था, इसलिए कल्याण सीनियर हो सकते लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है पार्टी में।
4: The Trinamool Congress's troubles seem far from over after police reached the Kolkata residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee at 2 a.m. to conduct searches in connection with an alleged land scam investigation. We are getting you this report.
5: Drama unfolded once again at the residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee in Kolkata's Kali Ghat. Police raided Abhishek Banerjee's residence in search of his personal assistant, Sumit Roy. The case pertains to alleged land grab and financial irregularities case linked to arrested ex-TMC MLA Sujoy Hazra. At around 3 a.m. on Saturday, a police team assisted by Kolkata Police and Central Forces reached Abhishek Banerjee's residence. When the top TMC leader did not open the door, police used glass cutters to break open the door. Once the police barged into the premises, nothing significant was present in the premises and there were no traces of Sumit Roy. According to sources, the police were on the lookout for Roy, who is allegedly linked to a land extortion case lodged at the Shalbani police station. The police, who had been tracking Roy's movements for the past few days, allegedly traced his phone location to Abhishek's residence.
6: আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করবেন, লুকিয়ে রেখেছে কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন।
7: দেখিয়ে এজেন্সি কা উসকা প্রেরোগেটিভ হ্যায় ভো কর রহে হ্যায় বিরোধী দল কা উপর সরকার সে ইয়ে সব লাগু করতা হ্যায় সহি তরহ সে উসকা মুকাবিলা কিয়া জায়েগা।
8: ইয়ে সরকার তো জো করাপ্টেড লোক হ্যায় করাপশন হ্যায় উসকো তো সফাই করেঙ্গে, और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे।
5: There seems to be no end to troubles for TMC netas. In a separate incident, the Enforcement Directorate raided TMC MLA Madan Mitra's properties as part of a money laundering investigation linked to an alleged municipality recruitment scam.
9: ईडी बहुत पहले से ही जो म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन में जो धांधली हुई है उसपे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसमें टीएमसी के लोगों का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो स्वाभाविक है तो जो जो टीएमसी लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उनके वहां पे ईडी जाएगी।
5: The raids come at a sensitive time for the TMC as it faces an existential crisis, with dissent now visible among MPs, MLAs and senior party leaders. With Anupam Mishra in Kolkata, Bureau Report, India Today.
4: Indian Air Force's aging AN-32 transport plane has suffered another crash, with five personnel losing their life in the tragic mishap in Assam. AN-32's crash that comes as IAF grapples with the urgent need to modernize its fleet. Let's take a look at this special report.

0: है कि संसद में जो लोग निकले हैं उसको बीजेपी में दिया जाएगा कि नहीं?
1: तो सुदीप बैनर्जी लॉबी करते थे, वो तो बहुत दिन से लॉबी करते थे। वो एक पहले भी एक बार तृणमूल से दीदी को हाथ छोड़कर भाजपा चला गया, अलग हो गया था, सस्पेंड कर दिया था पार्टी। तो उनका आदत है, उनका उनका एक प्रॉब्लम है। एंटायर तृणमूल वर्कर्स डिड अ लॉट फॉर हिम, द वोटर्स हु आर एंटी भाजपा एंड इन फेवर ऑफ ममता बैनर्जी वोटेड फॉर हिम, एंड नाउ ही इज सिटिंग विद भूपेन यादव जीज रेसिडेंट।
2: पूरा पश्चिम बंगाल ने टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया, ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, अभिषेक बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, और जब कुछ नहीं मिल रहा था, जब सत्ता से हट गया तब पब्लिक ने हटा दिया। उसके बाद वो लोग क्या शुरू किया, अपना जो बचे बुचे एमएलए है उनसे साइन चोरी करना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी। तो नेचुरली वो डर रहे कि उन लोगों का जो जमीन है, जायदाद है, सब कुछ अगर हड़प लेता है अभिषेक बनर्जी, तो इसी डर से सब भाग जा रहा है अभिषेक बनर्जी से।
3: टीएमसी के साथ कोई नहीं रहेगा, ये पूरा कोरप्टेड पार्टी, ए बुआ भातीजे का एक गवर्नमेंट था, तो इसलिए कल्याण सीनियर हो सकते, लेकिन उनका कोई महत्व तो नहीं है पार्टी में।
4: The Trinamool Congress's troubles seem far from over after police reached the Kolkata residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee at 2 a.m. to conduct searches in connection with an alleged land scam investigation. We are getting you this report.
5: Drama unfolded once again at the residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee in Kolkata's Kali Ghat. Police raided Abhishek Banerjee's residence in search of his personal assistant, Sumit Roy. The case pertains to alleged land grab and financial irregularities case linked to arrested ex-TMC MLA Sujoy Hazara. At around 3 a.m. on Saturday, a police team assisted by Kolkata Police and Central Forces reached Abhishek Banerjee's residence. When the top TMC leader did not open the door, police used glass cutters to break open the door. Once the police barged into the premises, nothing significant was present in the premises and there were no traces of Sumit Roy. According to sources, the police were on the lookout for Roy, who is allegedly linked to a land extortion case lodged at the Shalmani police station. The police, who had been tracking Roy's movements for the past few days, allegedly traced his phone location to Abhishek's residence.
6: আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করবেন, লুকিয়ে রেখেছে কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন।
7: দেখিয়ে এজেন্সি কা উসকা প্রেরোগেটিভ হয়ে ও কর রহে হ্যায় বিরোধী দল কা উপর সরকার সে এ সব লাগু করতা হ্যায় সহি তরহ সে উসকা মুকাবিলা কিয়া জায়েগা।
8: ये सरकार तो जो करप्टेड लोग है, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे, और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे।
5: There seems to be no end to troubles for TMC netas. In a separate incident, the Enforcement Directorate raided TMC MLA Madan Mitra's properties as part of a money laundering investigation linked to an alleged municipality recruitment scam.
9: ईडी बहुत पहले से ही जो म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन में जो धांधली हुई है उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसमें टीएमसी के लोगों का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो स्वाभाविक है, तो जो जो टीएमसी लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उनके वहां पे ईडी जाएगी।
5: The raids come at a sensitive time for the TMC as it faces an existential crisis, with dissent now visible among MPs, MLAs and senior party leaders. With Anupam Mishra in Kolkata, Bureau Report, India Today.
4: Indian Air Force's aging AN-32 transport plane has suffered another crash, with five personnel losing their life in the tragic mishap in Assam. AN-32's crash that comes as IAF grapples with the urgent need to modernize its fleet. Let's take a look at this special report.

0: for Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था.
0: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हाँ. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. हाँ, हाँ. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
0: She used digital resources extensively during her preparation.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स. हाँ. तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरे मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने. हाँ, हाँ. बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: कुत्ते का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र तो अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा।
1: जो नए नए सांसद हुए हैं या विधायक हुए हैं उनका मन में जोर नहीं था, वो सोच रहे थे कि अपने को क्या होगा, तो जल्दी जल्दी निकल गए। निकल के अभी उसको कोई पोजीशन नहीं मिला, अभी तक तय नहीं है कि संसद में जो लोग निकले हैं उसको बीजेपी में दिया जाएगा कि नहीं।
2: तो सुदीप बैनर्जी लॉबी करते थे, वो तो बहुत दिन से लॉबी करते थे, वो एक पहले भी एक बार तृणमूल से दीदी को हाथ छोड़कर भाजपा चला गया, अलग हो गया था, सस्पेंड कर दिया था पार्टी, तो उनका आदत है, उनका उनका एक प्रॉब्लम है। एंटायर तृणमूल वर्कर्स डिड अ लॉट फॉर हिम, द वोटर्स हु आर एंटी भाजपा एंड इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी वोटेड फॉर हिम, एंड नाउ ही इज सिटिंग विद भूपेन यादव जी रेसिडेंट।
3: पूरा पश्चिम बंगाल ने टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया, ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, अभिषेक बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, और जब कुछ नहीं मिल रहा था, जब सत्ता से हट गया तब पब्लिक ने हटा दिया। उसके बाद वो लोग क्या शुरू किया, अपना जो बचे बुचे एमएलए है उनसे साइन चोरी करना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी। तो नेचुरली वो डर रहे कि उन लोगों का जो जमीन है जायदाद है सब कुछ अगर हड़प लेता है अभिषेक बनर्जी, तो इसी डर से सब भाग जा रहा है अभिषेक बनर्जी से।
4: टीएमसी के साथ कोई नहीं रहेगा, ये पूरा कोरप्टेड पार्टी, वो भातीजे का ये गवर्नमेंट था, तो इसलिए कल्याण सीनियर हो सकते लेकिन उनका कोई महत्व तो नहीं है पार्टी में।
5: The Trinamool Congress's troubles seem far from over after police reached the Kolkata residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee at 2 a.m. to conduct searches in connection with an alleged land scam investigation. We are getting you this report.
6: Drama unfolded once again at the residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee in Kolkata's Kali Ghat. Police raided Abhishek Banerjee's residence in search of his personal assistant, Sumit Roy. The case pertains to alleged land grab and financial irregularities case linked to arrested ex-TMC MLA Sujoy Hazara. At around 3 a.m. on Saturday, a police team assisted by Kolkata Police and Central Forces reached Abhishek Banerjee's residence. When the top TMC leader did not open the door, police used glass cutters to break open the door. Once the police barged into the premises, nothing significant was present in the premises and there were no traces of Sumit Roy. According to sources, the police were on the lookout for Roy, who is allegedly linked to a land extortion case lodged at the Shalmani police station. The police, who had been tracking Roy's movements for the past few days, allegedly traced his phone location to Abhishek's residence.
7: আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করবেন, লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন।
8: দেখিয়ে এজেন্সি কা উসকা প্রেরোগেটিভ হয়ে ও কর রহে হ্যায় বিরোধী দল কা উপর সরকার সে এ সব লাগু করতা হ্যায় সহি তরহ সে উসকা মুকাবিলা কিয়া জায়েগা।
9: ये सरकार तो जो करप्टेड लोग है, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे, और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे।
6: There seems to be no end to troubles for TMC netas. In a separate incident, the Enforcement Directorate raided TMC MLA Madan Mitra's properties as part of a money laundering investigation linked to an alleged municipality recruitment scam.

0: Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट आता था.
0: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
0: She used digital resources extensively during her preparations.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरा मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.